लोटस एफएम में आपका स्वागत है रोमियो चंगो के साथ एंड यस चमजा वी डोंट केयर हु से व्हाट यू रॉक द वर्ल्ड एब्सोल्यूट फायर ऑन द सन डाउनर क्या बात है हॉट स्पाइसी तथा गरम योर शो इज एन ऑसम वाइब्रेशन यू टेक इट अवे चमजा एंड लेट देम कैच यू इफ दे कैन इन इट प्रेम लव

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टक्कर आना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।